कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 FM, आवाज तुमचा।

श्रोतन मित्रन हो, कैसन हो भैया? हम तो बहुत अच्छे है। नमस्कार श्रोते मित्र हो, आपल्याला वाटलं असेल की या आरजेला झालं काय आज नेमकं,

0: एक दिन हम गए जंगल मा, अरे एक दिन हम गए जंगल मा, वहाँ मिल गए हम काटाकू, ससुरा मिल गए हम काटाकू, किसी के हाथ में बरछा भाला, किसी के हाथ में चाकू, हाँ किसी के हाथ में चाकू। हमने पूछा, अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले दस।
1: हम कहा बस, का कहा बस,
0: ऐसा हाथ जमाया दो गज धरती माँ गए धस धस धस। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम पड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा

0: हर एक दिन अपने गाँव मा, हर एक दिन अपने गाँव मा, एक मैं मुसहर से आई, एक मैं मुसहर से आई, देख के अपनी मस्त जवानी मन मा वो मुस्काई, अरे मन मा वो मुस्काई, बड़े प्यार से, अरे बड़े प्यार से उसने हमका दिया गुलाबी फूल,
1: हम कहा ही का दे थो हमका फूल, का दे थो फूल,
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली हो गई हमसे भूल भूल भूल हम

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: उड़ बैठी बदलवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बदलवा दो कन्या,
0: हाँ उड़ उड़ बैठी बदलवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: पनवड़िया तो कन्या
1: बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले ली।

बैठी पनवड़िया तो कन्या बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले।

से चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस बहला खुली जाए बंद अकल का

कटारी हम दिल में उतर गई। हाय हाय कैसी गोरी गोरी तिखी तिखी छोरी वावा, कैसी गोरी गोरी तिखी तिखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रतबाला, खुल जाए बंद अकल का।

उसके लिए आंख लगती है एक श्रद्धा की, उसके लिए एक बोध लगता है समर्पण का, उसके लिए एक रिश्ता लगता है अद्वैत भाव का, उसके लिए एक चाहिए अंतर्मन में अनन्नदंसी से अनन्ना रवि। केवल महावीर को ही देखते रहे सुधर्मा स्वामी, इसलिए सुधर्मा स्वामी के पास उनके मन में, उनके वचन में, उनके कायायोग के स्पंदन में तीर्थंकर महावीर के अलावा कोई है ही नहीं। और इसलिए तीर्थंकर महावीर के वो सीक्रेट्स ओपन करते हैं कि जो कहीं पर और नहीं मिलते हैं। और वो शायद यदि हम ओपन माइंड से सुने समझे तो सुधर्मा स्वामी महावीर बनने का रास्ता प्रकट कर रहे हैं।

दास, एक शुरुआत आप भी कर सकते, एक शुरुआत मैं भी कर सकता हूं। हर जीव इसकी शुरुआत कुछ अलग तरीके से करता है। अनुत्तरगम, आपके आगे क्या है? आपका पास्ट आपके आगे है, आपका यस्टरडे टू टुडे है, या आपका टुडे ही टुमारो है? जैसा मैं कल था वही आज भी मेरे सामने है, मेरा वही चेहरा, मेरा मेरा वही कैरेक्टर, मेरा वही ज्ञान, मेरी वही श्रद्धा जो कल थी वही मेरे पास है। या आग्रह है या उसके आगे की है? मेरी स्किल कल से आज बेहतर हो रही है कि वैसे के वैसे है? मेरा सोच कल से बेहतर है कि कल जैसा ही आज है? मेरा सोना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा चलना, उसके सामने बेहतर बनने का लक्ष्य है क्या? इंसान में और जानवर में कोई अंतर है? कितना सा अंतर है? जानवर उसमें खुश हो जाता है, जैसा कल जिया वैसा आज जीने के लिए। इंसान कल से बेहतर बनना चाहता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि मैं बेहतर बनने के लिए हूं। बदतर वही होते हैं जो बेहतर बनने के रास्ते पर नहीं चलते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बदतर हो जाओ या बेहतर हो जाओ। जैसे है वैसे रह नहीं सकते। लेट मी रिपीट, जैसे है वैसे रह नहीं सकते। हर पल परिवर्तन अनिवार्य है। इस विश्व का अटल और परिवर्तनीय कोई नियम है, अनचेंजेबल कोई लॉ है, तो एक ही है कि एवरीथिंग इज चेंज, हर चीज चेंज होती है। लेकिन वो चेंज होने की दिशा कौन सी है? अनुत्तर अग्रह है। अनुत्तर का मीनिंग जानते हो, श्रेष्ठतम, द बेस्ट, द बेस्ट, द ग्रेट। और इसलिए कलाकार, कोई कलाकार वो आज की अपनी प्रस्तुति से संतुष्ट नहीं होता है। वो चाहता है कि कल की मेरी प्रस्तुति इससे भी बढ़िया हो जाए। चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे जो, उसकी एक ही तमन्ना रहती कि कल से आज मैं बेहतर बनूं। अनुत्तर गम परम महेशी। और जो ऐसे अनुत्तर आग्रह रखते हैं सामने, अपने सामने क्या है? मैं पीछे की ओर देखता हूं कि मैं बेहतर आगे की तरफ देखता हूं? अर्जुन मालिक के पास्ट के तरफ देखना

कि अर्जुन माने के उज्जवल भविष्य की तरफ देखना। तीर्थंकर महावीर ने क्या किया, क्यों वो बेहतर बन पाए, क्यों लोगों को बेहतर बना पाए, इस बात को बहुत गहराई से लीजिए कि तीर्थंकर महावीर के पास जो भी आया वो बेहतर बनता चला गया। उनका एक ही लक्ष्य था, उनका एक ही ध्येय था, उनकी एक ही वृत्ति थी, उनकी एक ही कृति थी कि जो आए वो बेहतर हो जाए। इंद्रभूति गौतम जैसे थे वैसे रह नहीं पाए, अर्जुन माली जैसा है वैसा रह नहीं पाया, चंडकौशिक जैसा वैसा रह नहीं पाया। क्यों? कि महावीर स्वयं को भी अनुत्तर बना रहे थे, निरंतर अनुत्तर की आराधना चल रही थी श्रेष्ठतम बनने की। और जो श्रेष्ठतम बनने की आराधना पर चलते हैं वही परम बनते हैं, वही महर्षि बनते हैं। अनुतरगम परमम महेशी, और उसके अंदर का रहस्य खोलते हुए कहते कैसे होना, हम सब चाहते हैं बेहतर बनना है। लेकिन बेहतर बनने के लिए एक छोटी सी छोटा सा सूत्र दिया, अशेष कम्मम स विशो हो इतना कर्म कहते पाष्ट को, जो मैंने भूतकाल में किया, जो आपने भूतकाल में किया, जो आपने एक घंटे पहले किया, जो आपने एक मिनट पहले किया, उसका जो इफेक्ट आप पर है मेरे पर है उसको कर्म कहते हैं। पास्ट के डिड को प्रेजेंट में कमांड करने देना इसको कर्म कहते हैं। आप चेक करेंगे कि आप जब गुस्सा करते हो तो गुस्सा करने के बाद गुस्से के इफेक्ट से फ्री हो पाते हो क्या? आपने किया गुस्सा, क्यों गुस्सा आपके अंदर में दो तीन घंटे उसका चलते रहता है। ये जो उसका दो तीन घंटे चलते रहना है इसको भगवती सूत्र में कहा गया परंपरा बंध। जिस समय मैं कर रहा हूं उस समय जो बंद होता है वो साक्षात बंद, सेकंड पल में जो होता है अनंतर बंद, और कंटिन्यूटी जो रहती है उसको परंपरा बंद कहते हैं। किसकी एक परंपरा चल रही, एक श्रृंखला चल रही, एक चेन चल रही। अशेष कम्मम सविसो हिता, ऐसा जितना भी पास्ट है मेरा तुम्हारा किसी भी व्यक्ति का। अर्जुन माली बेटर क्यों हो पाया, चंडकौशिक बेटर क्यों हो पाया, भगवान महावीर ने क्या कराया उनसे, मेघ कुमार की कहानी कल आपने सुने, क्या कराया मेघ कुमार को, आलोचना प्रतिगमन। अपने आतीत का अशेष विशोधन, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। गोल्डन की माइंस होती है, आयरन की माइंस होती है, प्रक्रिया क्या चलती है, जो अनादि काल से वैसे रखना है कि उसको तपा करके विशुद्ध करना। अशेष, अशेष का मतलब होता है 100%, 100%। आपने भी शायद आलोचना करी होगी, मैंने भी आलोचना करी होगी, की है, लेकिन क्या हमने 100% आलोचना करी क्या? और वो जो बच जाता है वही प्रॉब्लम करता है। अशेष कम्मम इस शब्द को समझना हो तो कैंसर के ट्रीटमेंट को समझ लीजिए। कैंसर के ट्रीटमेंट करते समय कैंसर क्योर भी हो जाए तो भी डॉक्टर छोड़ते नहीं है, क्योंकि वापस कभी आना जाए इसलिए और थोड़ा सा आसपास का कर लेते हैं। अशेष, क्योंकि एक भी सेल्स पीछे रह गया, एक भी सेल्स पीछे रह गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और मेरी या आपकी जिंदगी की ट्रेजेडी इतनी है, हमने अपने लाइफ की केमोथेरेपी तो बहुत करी, ऑपरेशन भी बहुत बार करे स्वयं के,
लेकिन कुछ छोड़ दिया और जो छूटा वही भयंकर बन गया। तीर्थंकर महावीर अशेष कम्मम सविशोता, ये जो कर्म है, जो पास्ट है, इसकी टोटली 100% विशुद्धि, प्यूरिफिकेशन, कि कुछ भी उसमें पास्ट का ना रह जाए। इसलिए एक प्रसंग आप समझ सकते हैं उस प्रसंग को, कि एक साल तक दीक्षा लेने के पहले वर्षदान किया क्षत्रिय कुंड ग्राम में रहते हुए, एक साल तक, एक प्रहर तक रोज जो मांगे सो देना। और दीक्षा लेकर के करमान ग्राम पहुंचे। कितना दूर होगा? मैक्सिमम 6-7 किलोमीटर। लेकिन 6-7 किलोमीटर जब शाम को वहां पहुंचे हैं, तो उस गांव का वो किसान उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि पास्ट का चेहरे पर कुछ रहा ही नहीं। पहचान तब पाएंगे ना जब पास्ट का कोई प्रिंट होगा, और पास्ट का प्रिंट नहीं, क्योंकि हमारी सारी पहचान किसके आधार पर चलती? प्रेजेंट के आधार पर कि पास्ट के आधार पर? हेलो, किसके आधार पहचानते हैं आप? मुझे किसके आधार पर पहचानते हो? पास्ट के आधार पर। मैं आपको किसके आधार पर पहचानता हूं? पास्ट के आधार। हम प्रेजेंट के आधार पर पहचानते नहीं, हमारे पास, हम अपना पास्ट लेकर के चलते हैं। और केवल लेकर चलते ही नहीं, जब भी मौका मिलता है अपने पास्ट को भुनाते भी हैं। हेलो, भुनाते हो? तुम्हें याद नहीं क्या मैंने तुम्हारे लिए किया था? किसको भुना रहे हो? पास्ट को। मैंने ये किया, किसको भुना रहे हो? पास्ट को। पास्ट को भुना रहे, इसका मतलब पास्ट की करेंसी लेकर के चल रहे। बड़े गजब के शब्द जाते हैं। जब भी साधना काल में भगवान महावीर को कोई पूछता कि आप कौन हो, वो आप कौन हो, वो नहीं कहते थे कि मैं सिद्धार्थ पुत्र हूं, वो नहीं कहते थे मैं त्रिशलानंदन हूं, वो नहीं कहते थे मैं वर्धमान हूं। उनका सिंगल जवाब होता था, समनो अहम, मैं श्रमण हूं, मैं श्रमण हूं। और इतना ही नहीं, आगम में सवम परिचित, दीक्षा लेने के बाद अपना भूतकाल के परिचय के आधार पर गोत्री लेना दोष लगता। अपने भूतकाल के परिचय के जो पुराने रिश्ते हैं उसके साथ जीना इस साधना में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप भूतकाल के आधार पर जीते हैं तो वर्तमान में आ ही नहीं सकते। यदि आपके दिमाग में आपका भूतकाल बैठा हुआ है तो आप उज्ज्वल भविष्य की तरफ यात्रा कर ही नहीं सकते। अशेष कम्मम सविशो होता है। क्यों सिद्धि नहीं मिलती? प्रसिद्धि मिलती, लेकिन सिद्धि क्यों नहीं मिलती है? चंडकोशिक को सिद्धि मिल गई, अर्जुन मालिक को सिद्धि मिल गई, इंद्रभूति गौतम को सिद्धि मिल गई। और पूरा इंद्रभूति गौतम का जीवन उठा करके देखो, इंद्रभूति गौतम ने कभी जिक्र किया हो कि भगवान महावीर के पास आने के पास मेरे पास 500 शिष्य थे? नथिंग। अतीत को ऐसा विसर्जन कर दिया कि उज्जवल भविष्य का रास्ता खुला हो गया। अशेष कम्मम सविशो होता। यदि बेहतर बनना है, यदि श्रेष्ठतम बनना है, सुधर्मा स्वामी जिस महावीर को जीते, ये महावीर, मैंने बहुत बार कहा, ये महावीर त्रिशलानंदन नहीं है,
ये महावीर सिद्धार्थ के नंदन नहीं है, ये महावीर वो है जिसको सुधर्मा स्वामी ने जिया है। और ये सारा जो चल रहा है एक एक ही उद्देश्य चल रहा है कि जिस भगवान महावीर को, जिस तीर्थंकर को सुधर्मा स्वामी ने जिया, उसको हम भी थोड़ा सा जीना शुरू करते हैं, हल्का सा उसको जीना शुरू करते हैं। और जिएंगे तभी ना जब उनसे प्यार करोगे। दिमाग से जिया नहीं जाता है, उसके लिए क्या लगता है? एक श्रद्धा। प्यार यानी क्या? श्रद्धा। श्रद्धा शब्द समझ में आता है, लेकिन श्रद्धा किसको कहते हैं? कि जिसके प्रति आपका अनकंडीशनल प्यार होता है उसको श्रद्धा कहते हैं, जहां कंडीशनल प्यार होता है उसको वासना कहते हैं। यदि प्यार में और श्रद्धा में अंतर करना हो तो इतना ही है, अनकंडीशनल है तो श्रद्धा है और कंडीशनल है तो वासना है। कहीं कहीं का प्यार कंडीशनल, सूर्यकांता रानी का प्यार कंडीशनल। जहां कंडीशनल प्यार हो गया वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुसीबत बनेगी ही बनेगी। और अनकंडीशनल प्यार होगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो तुम्हें भगवान बना ही देगी, उसको श्रद्धा कहते हैं। ये जग जाए इसके लिए यात्रा चल रही है। अशीष कम्भम सभी सोईता, उसी के बल पर सिद्धिम गई साई मनंत पत्ते। अपनी तो शुरुआत होती है सुख की और पलक झपकते ही सुख गायब हो जाता है। अपनी शुरुआत होती बदनामी की और अपन सुधर भी जाते हैं तो भी बदनामी अपना पीछा नहीं छोड़ती। ये स्मरण हो, अच्छा काम अपना द एंड पर पहुंचता है और बुरा काम अपना एंडलेस होता है। व्हाट इज द रीजन? आखिरी पंक्ति में सुधर्मा स्वामी उसका राज खोल रहे हैं। क्यों तीर्थंकर महावीर की सफलता, क्यों तीर्थंकर महावीर की सिद्धि की शुरुआत है, जन्म है, लेकिन उनकी सिद्धि की मौत नहीं है। अपनी बदनामी की मौत नहीं है और उनकी सुनामी की मौत नहीं है। कारण क्या उसके पीछे? साई मनंत पत्ते, साई यानी शुरुआत, सिद्धि की शुरुआत हो गई, लेकिन सिद्धि कैसी हो गई? अनंत हो गई, इन्फिनाइट। जिसको कहते हैं ना, पहले जो नाम नहीं लेता हूं लेकिन वो चक्रवात व्याज चलता था, अब चक्रवात व्याज जो है कितना ही चुका दो पूरा होता ही नहीं, उसको अनंत। जो मल्टीपल होते जाए, मल्टीपल होते जाए, प्लस नहीं मल्टीपल होते जाए, और जब वो मल्टीपल होता है तो वो अनंत होता है। प्लस में अनंत नहीं होगा, मल्टीपल में अनंत होगा। तो बेहतर बनने का सूत्र है, बदतर बनने से बचने का सूत्र है। दोनों शब्द साथ में दे रहा हूं। बदतर से बचना हो तो उसका भी सूत्र वही है, निरंतर बेहतर बनते रहो तो बदतर होंगे नहीं। एक सवाल पूछ सकता हूं क्या आपको? जिनके साथ आपने फेरे लिए उनके साथ के रिश्ते आपके रोज बेहतर बनते हैं क्या? हेलो। और वो बेहतर आप बनाते नहीं है, फिर वो बदतर होते जाते हैं और फिर सोचते रह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। जिस रिश्ते को तुम बेहतर के रास्ते पर नहीं ले जाओगे वो बदतर होने के रास्ते पर जाएगा ही जाएगा। और उसको यदि डेली बेहतर करते रहे, डेली डेली उसको तराशते रहे, डेली तराशते रहे,
डेली उसको साफ करते रहे, उसमें जो कचरा आया वो निकालते रहे, तो चमकता रहेगा, बेहतर होता रहेगा। ये बेहतर बनने का सूत्र है कि बदतर होने नहीं देना, अबतर होने नहीं देना, तो बेहतर बनते रहना। आज इतना एक छोटा सा विषय ले सकते हैं, आज गौतम लब्धि का अधिवेशन है और गौतम लब्धि की कल की रात्रि की गोष्ठी में कुछ प्रोटोकॉल तय हो गए। अधिवेशन के पीछे उद्देश्य एक ही था कि प्रोटोकॉल तय होने चाहिए। बिना प्रोटोकॉल के जब चलते हैं तो क्रिटिकल में पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो कल एक तीन चार प्रोटोकॉल जो सबके जानकारी के लिए और खास करके बहनों के लिए खुशी की बात होगी कि कल के गोष्ठी में मीटिंग में एक प्रस्ताव पास कर लिया है कि गौतम लब्धि के कार्यकारी में मिनिमम 30% बहने रहेगी, मैक्सिमम 50% रहेगी, मिनिमम 30%। दूसरा रूल फॉलो किया है कि अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और महामंत्री में एक बहन रहेगी, केवल वर्किंग में ही नहीं तो होल्डिंग में भी। तीसरा नियम पक्का पास हुआ है कि जितने गौतम लब्धि के साथ जुड़े हुए परिवार है उस 10 में से एक परिवार में से एक मेंबर कार्यकारिणी में आएगा, यानी 100 कलश है तो 10 लोग कार्यकारिणी में रहेंगे, 500 है तो 50 लोग कार्यकारिणी में रहेंगे, 10 के पीछे एक कार्यकारिणी में रहेगा ही रहेगा। और थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया है, मेरा काम बढ़ गया है, मेरा काम इतना सा बढ़ गया कि जो जो कार्यकारिणी में लिए जाएंगे उनको ट्रेन करने का काम मैंने लिया है। उस पर हर्षाश बोले, पहले पर कोई हर्षाश नहीं बोला, कमाल की बात हुई। प्रवीण ऋषि काम में लग जाओ तो खुश सगड़ा, क्या कमाल हो गया यार, क्या तकाशा है ना। अनसाता पूछे ने आवे और काम में लगा है, नो प्रॉब्लम। कि बिना ट्रेनिंग के काम चलता नहीं है, कई बार ट्रेनिंग के बावजूद भी काम होता नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग का तय किया है। और कहां गया हो, कई लोगों की तरह हमारे सब लेंगे वो बराबर काम नहीं करेंगे। मैंने कहा उसने काम नहीं किया तो जिम्मेदार मैं ही बनूंगा, मैंने ट्रेन किया है। मेरा प्रोडक्ट गलत निकला तो मैन्युफैक्चरर वाला का ही जिम्मेदार कौन, तुम कहे के जिम्मेदार। भैया प्रोडक्ट बराबर नहीं आए तो सीधा कंपनी का मालिक ने पकड़े लोग, यस। अरे में जाके किसी ट्रेनर ने अच्छा काम किया तो कोई मेरे पास आता नहीं, लेकिन कोई गड़बड़ किया तो मेरे पास आता है, मासा उस ट्रेनर से ऐसा लिया था। हम ऐसा ही हो, थे भी था घर में भी देखो, बेटा ने अच्छा काम करे तो थाने कोई धन्यवाद देवना आवे कोई, लेकिन बेटा ने कहीं गड़बड़ करी ना बाप ने पकड़े, बेटी ने कहीं गड़बड़ करी तो किन पकड़े। यस ऐसा ही है। ये अधिवेशन की कुछ बातें, अभी आज दिन में अधिवेशन चलने वाला है यहां पर, लेकिन बेसिक जो प्रोटोकॉल देना था वो कल तय हो गया। और हर साल 1/3 रिटायर, जो भी कार्यकारिणी में है उसमें से 1/3 रिटायर वो आए, तो जब तक राम नाम सत नहीं होता तब तक वहां पर रहना गौतम निधि में मंजूर नहीं है। बड़ा क्यों उद्देश्य की है कि प्रोटोकॉल रहेगा तो काम लंबा चलेगा, और बिना प्रोटोकॉल का रहेगा तो काम लंबा चलेगा नहीं। ये उपल्ली क्यों बोल रहा है आपको कि आज की जो गाथा है अनुतरंगम, तो गौतम लब्धि फाउंडेशन को भी क्या होना है, निरंतर बेहतर होना है, निरंतर श्रेष्ठ बनना है। कभी भी अपनी श्रेष्ठता में समाधान मत मानना है। आपने कई बार सुना है मुझे संतुष्ट होने के पचकान है, किसके पचकान है, हाँ मैंने कभी संतुष्ट नहीं होना है, मैं असंतुष्ट आत्मा हूं,
कौन सा आत्मा हो? असंतुष्ट आत्मा हो। थे किस आत्मा हो? संतुष्ट आत्मा है ना। आप मुझे संतोष के पक्ष का नहीं, जब तक अनंत ज्ञान नहीं मिलता है, जब तक अनंत श्रद्धा में नहीं पहुंचता हूं, जब तक अनंत शक्ति की अनुभूति नहीं लेता हूं, तब तक मैंने समाधान मानना नहीं है। अशेष कम्मम सनीसो हिता सिद्धिम गई साई मनंत पत्ते। फिर जाकर के जो सिद्धि मिलती है वो अनंत होती है, अनंत होती है। देखो आराध्य गुरुदेव की तरफ, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी किया कैसा हो रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहे आज, लेकिन भक्ति बढ़ती जा रही है, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और कई लोगों को लगता है गुरुदेव थे तब तक ठीक, लेकिन गुरुदेव नहीं, उसके बावजूद भी गुरुदेव इतना राज क्यों कर रहे हैं लोगों पर? सच बताइए, आज सभी के दिल पर राज किसका है? गुरुदेव का राज है। और उससे कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हम प्रेजेंट में हैं और हमारा राज नहीं, और गुरुदेव नहीं तो भी उनका ही राज। उसका कारण है कि जिंदगी में वो आखिरी पल तक बेहतर होने की यात्रा करते रहे, 28 मार्च के दिन भी नया सीखते रहे। इसलिए बेहतर बनने की उनकी यात्रा कभी पौज में पहुंचे ही नहीं। अशेष कम्मम स विश्वहिता सिद्धि गई साई मनंत पते नानेन सीलेन दंसनेन। किससे तुम बेहतर बन सकते हो? बेहतर बनने के रास्ते क्या है? बेहतर होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान। किसका ज्ञान? कि मेरे में क्या बदतर है और उसको बेहतर कैसे बना सकता हूं, इसका नॉलेज चाहिए। पहले नॉलेज चाहिए, उसके बाद उसको बेहतर बनाने का स्वभाव चाहिए, सील, वो नेचर चाहिए। कल्चर नहीं कहा, कल्चर नहीं कहा। कल्चर किसको कहते पता है आपको? आजकल उसके कल्चर के क्लास होते हैं। और मैं जानता हूं कई कई आपके करोड़पति परिवार के बेटियों को वो क्लास करवाने के लिए वहां भेजते हैं। उस क्लास की कम से कम फीस 30-40 लाख होती है, और केवल एटिकेट सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? क्यों चाय का टी कैसे लेकर के जाना है, सोफिस्टिकेटेड मैनर से कैसे रहना है, कैसा कदम उठना चाहिए, कैसे हाथ उठने चाहिए, ये क्या है? ये सील नहीं है। ये क्या है? ये सील नहीं है। फिर वो स्टेज पर सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टेज से नीचे उतरे कि ओरिजिनल सामने आ जाता है। सील किसको कहते पता है हमको? सील उसको कहते हैं नींद में भी जो एक्टिव रहता है उसको सील कहते हैं। नींद में भी जो एक्टिव रह जाए, बेहोशी में भी जो कंटिन्यू रह जाए, उसको सील कहते हैं। वो स्वभाव है जो 24 आवर्स रहता है उसको सील कहते हैं। परमात्मा ने उसके लिए डेफिनेशन दी, कंडीशन दी, दिया वा रावो वा येगो वा परिसंग वा सुते वा जागर माने वा। दिन में भी वैसा है, रात में भी वैसा है, अकेले में वैसा है, समूह वैसा है, सोया तो भी और जागा तब भी वैसा ही है। अपन जागा जरा अच्छा रहा, थोड़ा सा सोने के बाद तो अपना चेहरा नहीं देखे उतना अच्छा है। सगड़ा सामने बैठे जरा प्रवीण ऋषि घना अच्छा देखे, लेकिन अकेले में बैठने के बाद किसा देखे वो पूछो नहीं कोई। वो जब हो जाए दिन हो कि रात, अंधेरा हो कि उजाला हो, सम्मान हो कि अपमान हो, कोई ठुकरा दे या कोई सिर पर बैठा दे, तब भी जिसका नेचर एक जैसा रहता है, अकेला है तब भी वैसा ही है, और सब साथ में है तब भी वैसा ही है।
मैंने सगा छोड़ने चले गया, कहीं मिला रोने से, मस्ती में सगा थाने छोड़ने गया ना, तू तो थाने छोड़ने नहीं गयो ना, हेलो, परेशानी किसकी? हम स्वयं को छोड़ के जाते तो परेशानी, दूसरा छोड़ के जाते ठीक है, जो आया वो जाएगा, आता ही किस लिए है? हाँ, जो सांस आई है, जो आता है वो जाता है, तो काहे को रोता है? कोई कारण ही नहीं है उसका। दिया वा रावा एक वा परिसा गवा सुते वा जागर माने वा, ये सील की परिभाषा है, इसको सील कहते हैं। और सबसे आखिरी में रखा धन सने नयश, श्रद्धा, ज्ञान सील युक्त जब श्रद्धा होती है, समझ लेना ये सुधर्मा स्वामी है। कौन है? कौन है? हाँ, सुधर्मा स्वामी जब भी क्रम चेंज करते हैं तो उस क्रम को चेंज करने की वजह, हर जगह चेंज नहीं करते हो, जहां नाने ना दन से ना बोलते हो नाने दन से ना बोलते, लेकिन पहली बार उन्होंने यहां लाया कि ज्ञान में से सील में जाना चाहिए, सील में से श्रद्धा में जाना चाहिए, और ज्ञान सील से संपन्न होकर के जो श्रद्धा आती है वो श्रद्धे बनाती है।

0: ये तीन अपने पास है तो कोई आपको श्रेष्ठ बनने से रोक नहीं सकता है, और तीन आपके पास नहीं है तो कितने श्रेष्ठ बनाने वाले आए हैं तो सफल हो नहीं सकते हैं। ये तीन चाहिए, ये तीन ज्ञान, सील और श्रद्धा, ये तीन हो जाए तो मजा आ जाए। गौतम लब्धि के आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का चतुर्विध संघ के सामने बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अधिवेशन आपका चलना है, मंगल पाठ के बाद यहीं पर कार्यक्रम चालू रहेंगे और कुछ ध्येय तय करने हैं। ए भाव थोड़ा माझ बोलण पर हो देना, नहीं कुठे झालं नाही अजून, माझं झालं कधी मंगल पाठ झाला म्हणजे झालं, तोपर्यंत मी चालू आहे ना, तो बीच में कोई आया गया अब उधर से आया बाबू सेठ प्लीज हा उठे बैठ जा, घणो मुश्किल से तो मैं पटरी मारते हूं। गौतम निधि का अधिवेशन है और गौतम निधि के कार्यकर्ताओं ने आज गौतम निधि को जिस स्तर पर पहुंचाया उसके लिए गौतम निधि के सभी कार्यकर्ताओं का प्रवर्तक से जी के साक्षी में, चतुर्विध संघ के साक्षी में उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, अनुमोदन देता हूं। गत वर्ष गौतम लब्धि फाउंडेशन के अध्यक्ष के पद पर पंकज भाऊ की नियुक्ति पुणे में हुई। मैं केवल एक बात उस व्यक्ति के विषय में कहकर के बात को समेट रहा हूं। संभाजी नगर में गौतम लब्धि के स्थानीय शाखा के गठन के प्रयास चल रहे थे, सफल नहीं हो रहे थे। जिसको पकड़ो वो सटके, जिसको पकड़ो वो सटके, जिसको पकड़ो वो सटके। इंद्रचंद जी ने आकर के कह दिया, पंकज भवन इंद्रचंद से दोनों आए और इंद्रचंद सा ने कह दिया कि मां साहब इस काम को छोड़ दो, यहां नहीं हो सकता है। और वॉलेंटरी पंकज भवन ने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, वॉलेंटरी का। और जैसे पंकज भाव ने जिम्मेदारी ले ली, सारे भागने वाले दौड़ करके वापस आ गए, भागते भागते आ गए। और आज संभाजी नगर की गौतम लब्धि फाउंडेशन उनके नेतृत्व में बहुत सुंदर रीति से काम कर रहा है। और फिर गत वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति हुई, और पुणे वाले भी महसूस करते होंगे। हेलो पुणे वाले कटे बैठे हैं, पुणे वाले भी महसूस करते होंगे कि संभाजी नगर शनिवार वाड़े के आगे निकल गया। तो संभाजी नगर है ना, पुणे में शनिवार वाड़ा है, और इस तरीके से सारा पूरे साल उसने मेहनत करी, अपनी टीम से मेहनत कराई, और आज कहीं पर भी गौतम लब्धि फाउंडेशन का देश में कहीं पर भी अकाउंट ओपन करना हो तो बिल्कुल सहज काम हो गया। और पूरे फाउंडेशन के अकाउंट एक क्लिक पर कभी भी देख सकते हैं। सीएसआर फंड की व्यवस्था करी, ये आपकी जानकारी सबके लिए दे रहा हूं, बाकी जानकारी अधिवेशन चलती रहेगी। सीएसआर फंड की व्यवस्था करी कि गौतम लब्धि फाउंडेशन में सीएसआर फंड आ सकता है, इसकी व्यवस्था करी, और सबसे पहले उसके बेटे की फैक्ट्री का बेटे ने लोकेश ने पूछा कि इतना सीएसआर फंड है, बोले सबसे पहले गौतम लब्धि में देना है, और पहली राशि गौतम लब्धि में सीएसआर फंड की समर्पित करी। ऐसा अध्यक्ष और ये पूरी टीम और उसने अपने बहनों को साथ में लेकर के काम किया। अधिवेशन का कार्यक्रम चलना है, दो जज आए हुए हैं। कितने आगे? एक पंकज हो दोनों। हाँ जी, एक तातेड़ साहब है और एक हमारे पुखरा साहब हो रहा है। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि जिनको 10 के बाद बैठना हो आराम से बैठ सकते हो। ऐसा मत सोचना कि केवल गौतम निधि के कार्यकर्ताओं का, आप भी गौतम स्वामी के ही हो ना, तो आप भी जोड़ सकते हैं। तातेड़ साहब को इसलिए बुलाया, मैंने पहले भी यहां सभा में एक बार तातेड़ साहब की एक बात का जिक्र किया था। जब मैं केड़गांव था तब वो दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने एक बात बताई कि साड़ी पहनाने वाले को कितने पैसे मिल सकते हैं। किसको? डॉली जैन। कहीं देखो, यानी थाने मालूम नहीं, आने मालूम है। साड़ी पहनाने के चार्जेस कितने हो सकते हैं? थाने मालूम नहीं, थका अकाउंट में कितना पैसा जावे। जसव डॉली जैन के चार्जेस 1,00,000। साड़ी पहनाने के चार्जेस, और कितने मिनट में साड़ी पहना थी वो? 5 मिनट में साड़ी पहनाती है और 5 मिनट में 1,00,000 रुपए लेके जाती है। वो नेल पॉलिश की स्किल के चार्जेस, तो उन्होंने मुझे कहा कि महाराज साहब, अपने समाज में चतुर्मास में आप जहां हो, थोड़ी बहनों को ये कला सिखा दो तो उनको आपको गौतम लब्धे के पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज वो सारे कार्यक्रम की जानकारी, वो स्किल की, कि कैसे सस्ते और खतरनाक है, ध्यान में रखना, खतरनाक है, वेरी डेंजर है। कि आज इस स्किल में जो काम करते हैं वे वो लोग काम करते हैं जिनकी नजर तुम्हारी बेटियों पर होती, तुम्हारी बहुओं पर होती है। और वो केवल सजा करके ही नहीं जाते हैं, तो बहुत कुछ करके चले जाते हैं। तो स्किल के आपने लोग तैयार होने चाहिए, उसकी पूरी। और उन्होंने उनके पिताजी से नगर बहुत अच्छी तरह से परिचित है, और नगर में जो भी समाज में उनके समय में शुरुआत हुई, अस्कंजय तातेड़ जो साहब, क्योंकि उनके पास वो विरासत है कि केवल बोलना नहीं तो सक्रिय दायित्व निभाना है। और उन्होंने उस समय कहा कि मर साहब, इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आपका होता है तो मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगा। और दूसरे है हमारे पुखराज जी बोरा, वो भी रिटायर है, और वो 1976 से हम उनको धर्म और संघ और समाज का काम करते हुए देखता हूं, जिस समय वो कॉलेज में थे। अभय भो छाजेड़ और पुखराज साहब बोरा, इन दोनों ने अदिना सोसाइटी में उस समय युवकों का शिविर लिया था। तो ऐसे दो जज भी आज यहां पर आए हुए हैं, तो दोपहर आज व्याख्यान के बाद भी उनका सेशन चलेगा और दोपहर में भी उनका सेशन चलेगा। सबके लिए खुला है और बिल्कुल बाबू सेठ तैयारी में है और बहुत सारे लोग तैयारी में है, लेकिन मैंने प्रवर्तक सिंह जी को भी आने की एक ही कंडीशन पर हाँ बोली है कि वो केवल मंगल पाठ देंगे, कोई भी मेरा प्रोटोकॉल ब्रेक करने का प्रयास नहीं करेगा। मैंने अपने जीवन में तय किया है कि मुझे व्यवस्था का निर्माण करना है और मेरे पथ पर से मुझे पथ भ्रष्ट करने का काम कोई नहीं करेगा, वेरी क्लियर। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं, मैं केवल सेवक हूं, पुजारी हूं, जो भी होना है वो गुरु और भगवान का होना है। इसलिए आपकी मंगल भावनाओं को अंतरतम से बड़ी गहराई से कृतज्ञता के भाव के साथ में स्वीकार करता हूं, लेकिन अगले सारे कार्यक्रम के लिए मुझे अनुग्रह रखे मेरे पर, और किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रयास करे नहीं कि जिसके कारण से आपका दिल दुखे, मेरा दिल दुखे और मैसेज और कुछ चला जाए। इस बात का सभी बिल्कुल संयम से ध्यान रखेंगे, सबको आचार्य भगवंत की सौगंध देता हूं कि कोई भी इस प्रकार का उद्योग नहीं करेगा। यस, है ना। यहां तो मेरे पास पुण्य भूमि में हूं, दूसरी तरफ तो मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं तो कर रहा हूं। बाकी अनंत मंगल तो अनुतरगम परम महेशी आशीष कम्मम सविशोहिता सिद्धिम गई साई मनंत पते नानेन सीलेन यदंसनेन। और विरुथे के इस आराधना के साथ सुधर्मा स्वामी की, भगवान महावीर की आराधना के साथ 18 अक्टूबर को निकलेगी श्रुत भक्ति यात्रा। 20 अक्टूबर से शुरू होगी जिनेश्वरी की आराधना, उत्तराध्ययन सूत्र की अनुत्तर आराधना, अनुत्तर तीर्थंकर की आराधना भी अनुत्तर होगी। और ये पुण्य भूमि अनुत्तर है, यहां पर आराधना का एक नया शिखर स्थापित होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी से आग्रह करता हूं, अहिल्यानगर के गुरुदेव के भूमि के हर परिवार को इस बात को महसूस करना चाहिए कि 21 days, 2 hours for तीर्थंकर महावीर, जिन्होंने अपने 11,60,000 मास्कमन का पुण्य हमें दिया, उनके लिए हम 2 घंटे भी दिन के 21 दिन तक दे नहीं सकते हैं तो चुल्लू भर पानी भी तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा। बाजे बजाने हैं, लोगों को नचाना है, किस पर? तीर्थंकर महावीर पर। 18 अक्टूबर की भक्ति यात्रा अब वो चल रहा है, समर्पण चतुर्मास समिति का, लेकिन मैं मेरी ओर से डिक्लेयर कर रहा हूं समर्पण चतुर्मास समिति को जो निर्णय करना करे, मेरी ओर से मैं बोल रहा हूं कि श्रुत भक्ति यात्रा की जिम्मेदारी उसका होस्ट, उसका यजमान चतुर्मास समिति के अध्यक्ष बाबू सेठ बोरा पर जिम्मेदारी डाल रहा हूं। हेलो, हाँ, ने थकन देखी, वो रकन देख लियो, मैं वो आटने उठने इन्हें खोज उन्हें खोजो, गांधी ने खोजे कटे, चिंगड़े ने खोजे कि नहीं खोजे, हमें तो मैंने आज तय कर लिया था कि आज इसका निर्णय कर देना है। और आपको पता है वो निर्णय करते तो मैं नहीं करता, मैंने निर्णय के लिए कितना टाइम दिया उनको, बहुत ज्यादा टाइम दिया ना, बहुत टाइम दिया। आज करो काले करो, आज करो काले करो, आज करो काले करो। अच्छा, मंजूर तो करना ही पड़ेगा ना, तुझे ऑप्शन क्या है तेरे पास? तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आइए आज के 30 का पचकाने की, आज के 11 उपास के पचकान आशीष, 11 उपास के पचकान लेने वाले को, और मास्क मन की पचकावनी है, स्वयं को तैयार रखें, मास्क मन की पचकावनी है। सो किरण भाई विलासा जी बोरा भेंडा फैक्ट्री वाले, आज 30 उपास
1: 30 दिन
0: कौन है मन बता दे, मैं बोल दू
2: ये आशीष वो सत्कार हो रहा ना,
0: आशीष भाव का तो सत्कार सबके दिल में है, वो कितना ही ना कहे तो होना ही होना है ना। पूरे सक्रियता में तपस्या करी, डे वन से लेकर के समर्पण चतुर्मास समिति का कोई सदस्य यहाँ हो या नहीं हो, आशीष यहाँ पर है।
2: बिल्कुल, सुबह से लेकर
0: सुबह से लेकर तो

0: करने वालों को
1: उधर के सत्कार को उधर दे दो। 30 उपहास के 55
2: हो रहे
3: 30 60 62 दिव्यम प्यार मन उत्तम गणम सहस्त्र कर्ण महोत्र स्वस्मय श्रेय
1: ढलती उम्र में 30 उपास करने वाले को
0: धन्यवाद।
1: भिंडा फैक्ट्री से आकर के गुर्जर की पुण्य भूमि की गरिमा बढ़ाने वाले को
0: धन्यवाद।
1: आज है और 8 उपास पंकज चंद्रकांत फिरोदिया।
2: मैं दीपाली देसरडा सपना कटारिया नेता पिपाड़ा जो सौरभ बोरा मित्र मंडल के परिवार के भी है वो भी आगे आ जाए। प्रमीला भाई आए हो तो वो भी आगे आ जाए
1: सत्कार करने के लिए। मास्कमन का 8 उपास
2: उनका मास्कमन का सत्कार है।
1: पंकज चंद्रकांत फिरोदिया 8 उपास
3: 8 उपास 8 दिन 16 18 बत्तम दिव्यम प्यार मनत्न भगिनम सहस्रकरणम महोत्रगण सबस्मय वत्यगण वो श्री
1: मंगल पाठ
3: गुरुदेव की आज्ञा चत

0: पन्नतोदमो मंगलम चतारी लघुत्मा अभियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा सावलघुत्मा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्मो चतारी शरण पहुंच जामी अरियंते शरण पहुंच जामी सिद्धे शरण पहुंच जामी साहु शरण पहुंच जामी केवली पन्नतो धम्मो शरण पहुंच जामी अरियंतो का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख करना सुख करना और शरणा नी कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय
1: तीर्थंकर परमात्मा की जीवन शैली का प्रशिक्षण का शिविर 9-10-11 अक्टूबर रेसिडेंशियल शिविर डिस्कवर योर सेल्फ का और सातवें एजीएस का शिविर 9-10-11 को दोपहर में 2 से 5 माय फैमिली माय पावर हाउस का शिविर रात में शुरू होने जा रहा है 7:30 बजे 7:45 से 8:30 तक 8 तारीख से 12 तारीख तक आरंभ गर्भ साधना 9 तारीख से शुरू होने जा रहा है दोपहर 2 से 5 आज का एकासन एकासन एकासन
2: रामेश अरे माइक चालू करना
0: आज
1: का
0: आई एम बिल गुरुदेव क्या क्या उगे
1: आज का उपवास
0: गुरुदेव क्या क्या उगे श्रेय वटमी दिव्यम प्यार
1: और कल के व्यर्थ के लाभार्थी उज्जवल बोरा और वसंत जी चांदमल जी राठौड़ परिवार और आज के लाभार्थी थे आरएम विजया परिवार नीरज चेंगड़िया और साथ में बोरा परिवार तिसगा वाला
3: आज हमारे सभा के बीच
1: एक मिनट भाव से
2: आज का तेला
1: हमारे सीनियर जवान आए तपस्या वाले नहीं सीनियर वो तेला वाला
2: आज का तेला
0: रामेश्वर अठम बत्तम दिव्यम प्यार मनत्न वगैरह सहस्त्र गण महत्व गण सबस्मय वत्य गण
1: दो मिनट के लिए सभी शांति से बैठेंगे जो यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में आए हैं उनका सत्कार समर्पण चतुर्मा समिति की ओर से होने वाला जा रहा है बाबू सेठ।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोल।

0: ज्यादा वफादार है। आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या?

0: Attitude, huh? What does he think of himself? Just go tell him who I am.
1: आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।